मुंदा संतोख सरंपत झोली ध्यान की करे विभूत हिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बद

कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Namaste, behnor bhaiyo. Bade hi kam shabdon mein aapko sunana chahta hoon. Us saal ka lokpriya geet. Yeah. ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

आमतौर पे मंडे के दिन हमें पता चलता है कि चिराग ने वीकेंड क्या किया. आज ट्यूसडे है, वो कहते हैं कि पता क्या, माइन वॉज अ गुड, रियली एंजॉयड आर्सेनल बीइंग बीटन इन द चैंपियनशिप लीग फाइनल फॉर पीएसजी ऑन सैटरडे नाइट. लेकिन वहाँ फ्रांस में तो बहुत झगड़ा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस. On Sunday, enjoyed IPL finals in which RCB went back to back. Yesterday, did a picnic at a place called Tego Resort near Chaka Town with friends. It was fun, where kids played water games, ball, ladies did their vegetable cooking, and gents did karoga. Kya baat hai, dekha na? Chirag Patel bahut enjoy karte. Outdoor aapne kahin jana hai na, inse pooch kar jaye. इनको सब जगहों का पता है. भरत गंगाराम ने नमस्कार किया है किसको, वंदनीय परवीन जी का. सो काइंड ऑफ यू. मंगलवार की मंगल कामनाएं सबके लिए. बहुत शुक्रिया आपका सना काना, आपने भी ग्रीटिंग्स फॉरवर्ड भेजा है, बहुत शुक्रिया. रंजन विनोद फ्रॉम लंदन, सभी लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार. रमेश हरिया, सबको नए वीक और नए माह की शुभकामनाएं. 31 मई को एक और सुरीली आवाज़ खामो

0: और भरत गंगाराम ने कहा है कि देखो मोहम्मद रफी अगर किसी को पसंद करते थे ना फॉर अ डुएट दो गानों के लिए, शी वॉज द गो टू को सिंगर. गो टू मतलब कि जो जिस पर वो इतबार करते थे, रिलायबल थी इनकी ये को सिंगर जिनके साथ उन्होंने दो गाने गाए. हर करियर पीक्ड ड्यूरिंग अ मिड 1960s फॉल आउट बिटवीन मोहम्मद रफ़ी एंड लता ओवर रॉयल्टी इश्यूज. समय लता चाहती थी कि मौसीकार इनको रॉयल्टी दें तो मोहम्मद रफ़ी साहब कहते थे जो मुझे मुआवजा मिल गया ना गाने का वही काफ़ी है. लेकिन लता कहती थी नहीं. उधर झगड़ा हो गया उन्होंने लोगों, जी हाँ, लता ने फिर मौसीकारों को कहना भी शुरू किया कि मैं मोहम्मद रफ़ी के साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी और आप भी उनको ना लें. ये तो साजिश उनके साथ भी हुई थी. भरत गंगाराम कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड सुमन स्टेप्ड इन एंड रिकॉर्डेड ओवर 140 डुएट्स विद मोहम्मद रफ़ी साहब डिलीवरिंग टाइमलेस हिट्स लाइक आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे एंड तुमने पुकारा और हम चले आए. वेरी ट्रू भरत गंगाराम, सो गुड, थैंक यू. और प्यार अली भाटिया क्या कहते हैं?
1: दीगा है ना फेरो, ये गाना फिल्म ब्लैक प्रिंस का है, 1959 की मूवी है जिसको मोहम्मद रफ़ी और सुमन कन्यापुर ने गाया है और जिसकी जिसको लिखा उपेंद्र ने लिखा है और जिसकी दिन दिन सेन सेन ने बनाई है. ये गाना, पुराना गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: अच्छे प्यार अली भाटिया. और रसीला, रसीला क्या कहती हैं? कहती है परवीन जी द बेस्ट ऑफ सुमन, निगाहें पर्वतों के पेड़ों पर. ओ यस वी फॉरगॉट, जी जी, पर्वतों के पेड़ों पर आए वो दिखाती करती हूँ रसीला. एंड अखियों का नूर है तू, ये भी है मेरे ख्याल से कहीं करीब ही है अखियों का नूर. ओके और बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ सुमन कल्याणपुर, थैंक यू सो मच कहा है रसीला ने. अमीर अली रानी, परवीन जी थैंक्स टू फॉर दिस इज आल्सो द सेम वर्जन ऑफ सुमन कल्याणपुर. जी जी, वो सामने जो आया उन्होंने नहीं लिखा हुआ था कि सिंगर कौन है. जबीन हीरानी, अ वेरी गुड मॉर्निंग परवीन जी एंड टू द लिसनर्स. करेज डजन ऑलवेज roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, I will try again tomorrow. May I add, superb songs as always. Bahut acche Jabin Hirani. Sally Dar from London. Aayi hui thi yahan chuttiyon par. Aur London. Agla gana Sally Dar ki nazar karenge. Aur ML Vishwakarma kehte hain ki dekho, joke of the day. कहते हैं कि पत्नी को बस में बिठा दें. अटेंशन प्लीज, पत्नी को बस में बिठा दें. लेट द लाइफ गेट इन टू द वाइफ गेट इन टू द बस. उसको बाद ही आपका कह सकते हैं उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि पत्नी बस में है. अच्छा, पत्नी बस में है यानी मेरे काबू में है. वाह क्या बात है. कहते पत्नी को बस में बैठा दें फिर उसके बाद ही आप कह सकते हो कि पत्नी बस में है. मैं ML विश्वकर्मा फ्रॉम लंदन, वंडरफुल. और पहले तो मैंने समझा ही नहीं, मैंने कहा ये भला क्या है. दिनेश भट्ट ने अपनी बर्थडे मना ली उस दिन, हमने बहुत कोशिश
2: की. IPL RCB ने जीत लिया है कप और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टू टू पाकिस्तान, पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है और आज दूसरा मैच वनडे का है.
0: अच्छा, पाकिस्तान

ने जीत लिया है, कमाल है, ठीक है, बहुत अच्छे। और जो के अभी अभी सैलीडार आपको सबको सलाम और नमस्कार कहा है, और बाद में मैं रसीला का भी मैसेज पढ़ती हूँ।

मिसेस पटेल के साथ बात हुई है, बड़ी चुलबुली हैं हमारी मिसेस पटेल, समझ इतनी नॉलेज है इनके पास हिंदी फिल्मों की। मैंने पूछा कि क्या सुमन कल्याणपुर आपकी फेवरेट थी, कहती वो भी थी आप हैं। अच्छा समझ, मैं आपको ये फसीहा कुरैशी हमारी लिसनर अमेरिका से जब रात हो का प्रोग्राम सुनती थी तो आजकल भी कभी कभार आपके लिए इन्फॉर्मेशन भेजती हैं, तो कहती हैं उन्होंने एक छोटी सी नज्म सी किसी ने लिखी हुई है तो वो भेजी है आपके लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक सवाल उठाया जाए। आप मुझे बताएंगे, मैं पढ़ती हूँ कविता, ओके, आप मुझे बताएंगे कि क्या कह रहा है कवि। कहती हैं जवानी में हमारे भी बड़े रंग थे, जवानी में हमारे भी बड़े रंग थे, नाम की एक हसीना के संग थे, डैश नाम की एक हसीना के संग थे। ये डैश आपने मुझे बताना है क्या, मैं आगे समझाती हूँ। महीने की पहली तारीख को मुस्कुराती थी, तीसरे तक आते आते अलविदा कह जाती थी, कभी दोस्तों के साथ घूमने में चली जाती, कभी ये माई के संग भाग जाती, हम ढूंढते रह जाते जेब के कोनों में, हम ढूंढते रह जाते जेब के कोनों में, और वो खर्चों के संग इठलाती। समझ ये क्या थी जिसके बारे में पोएट ने कहा है कि महीने की पहली तारीख को मुस्कुराती थी, तीसरे तक आते आते अलविदा कह जाती थी, कभी दोस्तों के संग घूमने चली जाती, कभी माए के संग भाग जाती, हम ढूंढते रहते जेब के कोनों में, और वो खर्चों संग ठलाती। क्या थी, एक लफ्ज का आंसर दीजिएगा, एक ही लफ्ज़। 07011061061

0: विलन।
1: अभी अभी ट्रायंगल भी नहीं है। आई डोंट थिंक आई डोंट वॉच ऑल द फिल्म मूवीज ऑफ द प्रेजेंट डे, यू सी,
0: क्योंकि इतने ज्यादा एंगल आ गए हैं कि ट्राई की जरूरत नहीं, अभी तो 4-5 एंगल आ गए। ये मुझे लग रहा
1: है टाइम्स हैव चेंज है पर
0: जी बिल्कुल।
1: ओके ओके
0: थैंक यू
1: थैंक यू ओके बाय।
0: तो सामिन अब देखते हैं कि हमने क्या तनख्वाह की बात की है ना, मंजुला विश्वकर्मा ने भी सही जवाब दिया है और धीरू भाई लखानी बड़ी अच्छी बात है आप सुन रहे हैं गीत और इन्जॉय कर रहे हैं और सुमन कल्याणपुर की तस्वीर भेजी है, ओ माय गॉड लवली सॉन्ग्स यू प्लेड। शुभ नाम ने कहा है आई जस्ट वांट टू नो दैट सिंगर सुमन कल्याणपुर पास्ड अवे हर फ्यूनरल ओवर द वीकेंड, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। ओके थैंक यू सो मच। ओके हमने तनहा की तो बात कर ली है समिन, वो आंसर आपने दे दिया पर ये ख़त्म नहीं हुई कविता। वो कहते हैं अभी और भी सुनिए। फिर एक दिन जिंदगी ने करवट ली, बालों ने भी सफ़ेदी की साजिश की, घुटनों ने भी कहना शुरू किया भाई साहब अब आराम कीजिए ज़रा। तभी एक नई नायिका ने एंट्री मारी, ना मेकअप ना नखरे, बीवी सादा सी प्यारी सी, नाम इसका डैश और अंदाज था इसका पूरा, लाइफस्टाइल कनेक्शन। तो ये क्या थी जिसने एंट्री मारी है, अब ये हर महीने टाइम पे आती है, ना बहाना बनाती है ना रूठ जाती है, चुपचाप बैंक में आकर बैठ जाती है, SMS करके दिल बहलाती है, प्रिय ग्राहक आपकी डैश आ गई है, और ये मैसेज सुनकर दिल गा उठता है। शाम की चाय के साथ वो बैठते हैं, ये कान में धीरे से कह जाती है, क्या कह जाती है, घबराइए मत हीरो, पिक्चर अभी बाकी है, मैं हूं ना। एक शर्त जरूर लगाती है, बार बार परीक्षा लेती है, ये जीवन प्राण पत्र भरवाती है और प्यार से पूछती है, कभी कभी पूछ लेती है अभी जिंदा है। हम सीना तान के कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है। असली मोहब्बत तो ये है जो आती है समझ जाके बैंक में बैठ जाती है। अगर हम भी कभी चुपके से निकल जाएं तो ये हमारी अर्धांगिनी का हाथ थाम लेती है, कहती है पूछती है पहले जिंदा है, कहते हैं अगर हम ना भी रहें तो ये हमारी अर्धांगिनी हमारी बीवी का हाथ पकड़ लेती है, उसे बिना झुके जीना सिखा देती है, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस चुपचाप निभाती है अच्छा हर जिम्मेदारी की, अच्छा जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से निभाती है, हर जिम्मेदारी की इबादत। दोस्तों मोहब्बत बहुत देखी होगी आपने पर ऐसी वफादारी कम ही मिलती है, जहां डैश ने साथ छोड़ा वहां डैश ने उम्र भर साथ निभाया। सो पहला डैश इस तनखा, जहां तनखा ने साथ छोड़ा वहां डैश ने उम्र भर निभाया। ये दूसरा डैश क्या है समिन, वो बता दें दूसरा डैश, ठीक है, तो फिर पता चल जाएगा आपको आंसर सही मिला है कि नहीं। सो 07011061061 पर जवाब दें कि ये दूसरा डैश क्या है। हम सुमन कल्याणपुर के पास

0: और बिंदु फ्रॉम इंडिया, आपने सबको नमस्कार कहा है और कहा है कि आंसर रूपी है, पर वो एक्चुअल अगर हम देखें तो ये आंसर कल अकेला रूपी नहीं है, कुछ है। ओके, ममता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथ हैं आपके वासंती फ्रॉम मुंबासा, दूसरा शायद पेंशन है, बिल्कुल, और पहला भी था करेक्ट। रितु, आपने कहा है कि नॉलेज नहीं, दूसरा जो है वो नॉलेज नहीं है। और सोनल मोदा करेक्ट आंसर। सना, कुड बी, वो तो ठीक है, पहला तो तनख्वाह था, मैंने दूसरा अब पूछ लिया है। और नीला शेठ,
1: हेलो परवीन जी, आज तो आपने कमाल कर दिया है, सुमन कंडियानपुर के गाने सुन के बहुत मजा आ रहा है, कितना मीठा वॉइस था परवीन जी उसका। पॉलिटिक्स के कारण थोड़ी तकलीफ हुई उसको, लेकिन उसने जो गाने गाए हैं सच्ची बहुत अच्छे हैं। और उसका जन्म बांग्लादेश ढाका में हुआ था 28 जनवरी को 1937, तो ऑलमोस्ट वो 89.5 ईयर की हो गई, तो काफ़ी लंबा जीवन था उसका। और बहुत अच्छी तरह से उसने अपनी बताई आवाज़ सुनाई सबको, मुझे बहुत आनंद हुआ, लेकिन दुख भी हुआ कि हमने उसको खो दिया। थैंक यू वेरी मच।
0: लेकिन वो हमारे दिलों में बसी रहेगी, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई कैन सी दैट, इतना पसंद कर रहे हैं। परवीन जी, द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इज रियली एक्सलेंट। सुमन कल्याणपुर वॉज माई फेवरेट सिंगर, वेरी हम्बल एंड रिस्पेक्टेड सिंगर एंड अ लेजेंड ऑफ हर लाइफ टाइम। रशीदा इब्राहिम, आई एग्री विद यू एंटायरली, बहुत बेहतरीन और हम्बल मॉडेस्ट थी सिंगर।
2: परवीन जी, जैसे हम तुम, ये गाना फिल्म में शादी करने चला का है, जिसको मोहम्मद रफ़ी और सोनम किरणपुर ने गाया है, और जिसको मुझे सुल्तानपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन चित्रगुप्त ने बनाई है, गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: और समय आहिस्ता आहिस्ता सुमन कल्याणपुर के गाने भी आखिर में आएंगे, आते दिनों ज़रूर मैं सुनाती रहूँगी। मेजर एंड यास्मीन वांजा, यू आर एंजॉइंग योर फेवरेट सॉन्ग। मंजुला विश्वकर्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि ये सेकंड डैश है क्या, सेकंड डैश नॉलेज नहीं है, कुछ और है। और समय एक गाना सुनते हैं।

0: और सामने आगे हमने एक मुहावरा भी करना है, लेकिन इससे पहले नीला शेट, आपने करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल, ओके। और आंसर क्या था? चिराग पटेल ने कहा है पेंशन, बिल्कुल करेक्ट। पहला तनख्वाह था, तनख्वाह मतलब सैलरी जो हर महीने आती है।
1: उम्र होनी है, थैंक यू जी।
0: नहीं, उम्र नहीं थी, पेंशन थी। और प्यार अली भाटिया,
2: आया हमको प्यार निभाना, ये गाना फिल्म पहचान का है, जिसको मुकेश और सुनील कानपुर ने गाया है, और जिसको इंदेवर ने लिखा है, और जिसकी धुन सबके जय किशन ने बनाई है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: और गाना हमने डेडिकेट किया लतीफा को और परवीन भट्ट, दोनों सुन रही हैं। और लतीफा, इट सो गुड टू हियर कि आपको इतने अच्छे लगते हैं पुराने गाने, एंड यू बीन लिसनिंग टू द प्रोग्राम फॉर ईयर्स, ग्रेट लतीफा। अब समिन सुमन कल्याणपुर का तो दौर ख़त्म हुआ, लेकिन हमने आपको पूछना एक मुहावरा। समिन, किसी ने कुछ सुना है, मे बी कुछ कहा है, किसी ने गाली दी है, तो वो इतने गुस्से में आ गए हैं, बहुत शदीद गुस्सा आ गया है उन्हें, तो शदीद गुस्से की हालत को मुहावरे में कहिएगा, ठीक है? मुहावरा बनाकर बताइएगा कि मुहावरा है क्या। कुलवान सरोए इन लंदन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भी है, लेकिन अब मुहावरे का दौर है। मुहावरा आपने बनाना है, किसी ने कुछ कहा है या मारा है या न जाने बेइज्जती की है, वो बहुत गुस्से में आ गए हैं। कौन सा मुहावरा बेस्ट होगा?

अच्छा समय आप कर रहे हैं मुहावरा किसके लिए बहुत ही गुस्से में कोई आ गया तो बात कर लेते हैं नहीं समय ने एक गाना एक्चुअली गाना नहीं एक भजन है मुझे बहुत पसंद है उसके साथ शुरू करते हैं खबरें सुनेंगे फिर बाद में आपके मैसेजेस

0: favorites from the 90s.
1: Mera dil bhi kitna pagal hai.
0: 2000s.
1: Dil duba.
0: And today, East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel. With Stanbic Vehicle and Asset Financing.
2: President William Ruto has reaffirmed his administration's commitment to ensuring the safety, security, and socio-economic transformation of northeastern residents. Speaking today during an inspection of the Wajir Tarpach Kotula Road project, President Ruto reiterated that the region will no longer be left behind in public services and infrastructure development.
3: Wale Al-Shabaab walikuwa wanatusumbua hapa. Wale walikuwa wanatuletea matatizo hapa. Nyinyi mnajua tumekabiliana na wao. Sasa watu wa hapa Kutulo wanaishi kwa amani. Ni kweli ama si kweli?
2: Former NAT leader Wilson Sossion has warned the Ministry of Education that 100% transition policy should not lead to over-involvement and congestion in schools. Speaking on early on Citizen TV, Sossion maintained that the ministry must check admissions to stop schools from taking in students beyond the stipulated capacity. He rallied officials to monitor admission protocols closely, emphasizing that allowing excess numbers compromises the learning environment.
4: When we talked of 100% transition, it did not call for over-enrollment and congestion
0: of
4: schools.
0: Great songs, and this is where
4: the ministry
0: day
4: has to check during admission. Why do you allow schools to admit beyond the number that is stipulated?
2: A U.S. congressman in Washington, D.C. has criticized former President Donald Trump's plans to send Americans exposed to Ebola to a treatment facility in Kenya. He says the United States should care for its citizens at home. The proposal sparks debate in both countries.
5: We want boarding schools to remain. What we want is the government must reinforce discipline and order in all schools, whether boarding or day school. Schools must be under order. That's what you are saying. And the only issue is that parents must be involved. Once the parents are involved, everything is in order.
2: Doing away with boarding schools will not solve cases of arson in schools and could disadvantage children from less privileged families. Parents Association Chair Sela Sobohansa says boarding schools provide a safe haven for many vulnerable learners and argues that instead of abolishing them, the government should strengthen discipline and management system.
0: East FM News. Stanbic Vehicle and Asset Financing. Support your ambition with zero processing fees and flexible terms. Email carloan@stanbic.com. TNCs apply. Regulated by CBK.
6: और सामने खबरें भी आपने सुन ली हैं. मनहर पटेल क्या कहते हैं?
7: नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण, केम छो लिसनर्स. A general question I have to ask you. बहुत पहले अपने थिएटर में पिक्चर देखने को जाते थे, तभी इंडिया में पीनट्स मिलते थे, खारी सिंह जिसको बोलते हैं, और ये साइड का जो प्रदेश है मींस अफ्रीका यूरोप, वहाँ पॉपकॉर्न मिलते थे. तो आप क्या सोचते हैं कि जास्ती क्या खाया जाता था, खारी सिंह मीन्स पीनट और पॉपकॉर्न? आपको किसी को पता है तो प्लीज शेयर दिस थिंग. मनहर पटेल की सुमो. थैंक यू.
6: मनहर कहते हैं ज्यादा पॉपकॉर्न के पीनट्स. मुझे तो लगता है पॉपकॉर्न सारी दुनिया में, आपने भारतीय सिनेमा घरों की बात की है, ओ वहाँ भी मुझे लगता है पॉपकॉर्न ही होंगे सबसे पॉपुलर. ओके, रितु गुप्ता हमारी फर्स्ट कॉलर टू गिव मी द राइट आंसर. सही जब मुहावरा दिया है आपने. और होती है अल्ताफ समेजा, नहीं ये नहीं होगा, दिमाग ठिकाने है. नहीं नहीं नहीं, ये तो इसके लिए है ही नहीं कि किसी को बहुत गुस्सा आ गया है. अच्छा, मंजू डगर करेक्ट है, अगर ये मुहावरा है ठीक है. सना काना, नहीं, स्टे इन योर लिमिट. नो नो नो नो, इसका तो गुस्से से कुछ है ही नहीं. अच्छा, गुस्से में डैश डैश डैश ममता, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब है आपका. और सैली डार, गुस्से से बिल्कुल सही, वेल डन। उर्दू का मुहावरा है और मुझे पता है कि आपका गुजराती और पंजाबी में भी यही होगा। सैलीडार, थैंक यू, यूनिक है इस इनका मुहावरा सैली का।
8: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, मिस दंजल हेयर। प्रवीण जी, आपका मुहावरा है आग बबूला हो जाना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
6: अच्छा, यही आप सब ने दिया है अब तक, आग बगोला हो जाना। ओके, वो तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, पर एक और है जो सैलीडार ने दिया है, वैसा मिल जाए ना बहुत अच्छा हो। और बिंदु, आपने पिछला सवाल का जवाब सही दिया था, चिराग पटेल, आग बगोला होना, बिल्कुल। और बीना पटेल, आग बगो ग है, बबो नहीं है, बगोला। नीला शेत, गुस्से में लाल पीला होना, ओके। मैं अभी अभी आपको बताती हूँ सैली ने क्या कहा था। सोनल मोदा, आग बगोला होना। मंजुला विश्वकर्मा, ओके, इनकी बात सुनते हैं।
9: सबको नमस्कार परवीन जी, अरे बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, पेंटिंग चल रही है घर पर, और अभी आपने जो मुहावरा पूछा है वो हो सकता है आग बबूला होना या चेहरा तमतमा जाना, खून खौलना भी बोल सकते हैं कि गुस्से में खून खौल गया।
6: बिल्कुल बिल्कुल, खून खौलना कि जैसे उबल रहा हो आपका खून अंदर। ओके डियर, अनदर वन इज लाल पीला होना, वो भी है, किसी और ने भी दिया था लाल पीला होना वगैरह वगैरह। अब जो एक यूनिक था वो अभी तक किसी ने नहीं दिया, जो यूनिक मैं कह रही हूँ, अगर वो मिल जाता है ना तो फिर समझ लीजिए आपने सही जवाब दिया है, क्योंकि आग बगोला एवरीबडी। रितु गुप्ता, वेरी गुड, आपने कहा है आंखों से अंगारे निकलना, बिल्कुल, तब होता है जब आप बहुत गुस्से में हो, आंखों से अंगारे निकलना, वेल डन, बहुत सही। नाहिद अख्तर की आवाज़,

0: एक और आंसर आ गया है तंजानिया से, सेकंड कॉलर टू गिव मी द काइंड ऑफ आंसर जो मैं ढूंढ रही हूं. बाकी आग बगोला अंगारे वगैरह एक और था, जरा डिफरेंट था, वो मैंने कहा कि अगर मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात हो. दे दिया है शनाज बट फ्रॉम तंजानिया, करेक्ट. फिर आते हैं कौन, अजय पाल. अजय पाल की सुनते हैं.
1: हेलो प्रवीण जी, गुस्से में लाल पीला हो जाना, और मनर जी का जो आंसर है वो है पॉपकॉर्न नहीं है प्रवीण जी, वो है मूंगफली पीनट जो है वो इंडिया में हम खाते थे और वो भी छिलके के साथ होते हैं. फिर आप बैठ के छिलका तोड़िए और बैठ आराम से बैठ के खाइए सिनेमा हॉल में, और छिलके जो थे उस वक्त बिखेरते रहिए चारों तरफ, कोई कहने वाला नहीं था. तो सही आंसर है मूंगफली. थैंक यू.
0: अच्छा ओके अजय पाल, अगर मूंगफली है तो ये सही ही होगा. मेरा गाना रसीला कहती हैं आपने सुना दिया है. नाहिद अख्तर और रितु गुप्ता को बहुत पसंद है. गुस्से से लाल पीला होना सोनल, ओके. उमर फ्रॉम जर्मनी, गुड मॉर्निंग टू द ब्यूटिफुल लिसनर, सच लवली सॉन्ग्स यू बीन प्लेइंग, प्लीज कीप अप द ग्रेट वर्क. थैंक यू उमर. और रमेश हरिया, पारा सातवें आसमान पे चढ़ जाना, पारा सातवें आसमान पे चढ़ना, ओके. एक है जो अभी तक सिर्फ दो लिसनर्स ने दिया है, कोशिश करें जो अब तक मिले हैं उनके अलावा कोई है आपके दिमाग में.

0: कमाल दा गाना जी
1: नो और कृष्ण सर लिखा कि नहीं है हु वाज द राइटर
0: शाहिर लुधियानवी जी ऑफ कोर्स
1: क्या ब्यूटीफुल लिखा और ऊपर से फिल्म में भी इसका मंजर कैसा था
0: जी बहुत लंबा गाना है ये करीबन 8 मिनट का है
1: ये 6 अभी मैंने जो सुनाया आपको 6 मिनट का और अभी बाकी है तोबा तोबा क्योंकि
0: दो फ्लेयर वाली व्हाइट कलर की सलवार और काला ड्रेस पहना क्या खूबसूरत लग रही थी लता आपने
1: माला सिन्हा
0: बात छोड़ दीजिए
1: और राजेंद्र कुमार थे उनके साथ
0: जी जी राजेंद्र कुमार थे स्कूल की कॉलेज की फिल्म है
1: कॉलेज जी कॉलेज टाइम
0: कंपटीशन होते थे द हमारे जमाने में भी होते थे
1: जी कमाल है थैंक यू
0: कृष्ण कमाल
1: समय ये मेरा कृष्ण सरोय का फेवरेट नगमा है जो सवाल जवाब में हो दो अदाकारों के बीच हो और कमाल

और एमएल विश्वकर्मा फ्रॉम इंडिया, आपे से बाहर होना ये आपने कहा है, बिल्कुल आपे से बाहर हो जाना। और सना काना, दांत पीसना, ओके इवन दैट मींस के गुस्से में होना। अमीर अली राना कहते परवीन जी व्हाट अ शो, रियली इट वाज सो एंटरटेनिंग, नो वंडर वीकेंड्स डोंट फील द सेम, हैव अ ब्लेस्ड डे, आमीन आमीन। अमीर अली राना, उमर मुकेश, मैंने पीना सीख लिया, आपने ये गाना कभी सिखाया सुनाया है, मैंने पीना सीख लिया, अच्छा ढूंढती हूँ वो भी सुना देती हूँ उमर के लिए जो जर्मनी में है। पहले ये सुनिए,

0: जब इन हीरा ने आपने कहा उफ आई कांट बिलीव इट दिस इज लाजवाब द प्लेलिस्ट सुपर सिलेक्शन एब्सोल्युटली अमेजिंग जब इन थैंक यू सो मच इंडीड आप एंजॉय करें मुझे बहुत ही खुशी होती है
1: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी सलीम मैं हूं फ्रॉम लंदन प्रवीण जी क्या आपने फैंटास्टिक मुकेश साहब का गाना लगा दिया हमने प्यार किया कितना थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट
0: एंड सलीम जब ये गाना आया था फिल्म आई थी बस लोगों का दिल जीत लिया इस गाने ने ना जाने मे बी इट वॉज समथिंग एवरीबडी फेल्ट फरहंदा शेख
2: अस्सलाम वालेकुम परवीन आज तो आपके प्रोग्राम इतना खूबसूरत है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपका प्रोग्राम सुनने के लिए और गाने भी एक से एक बढ़कर है अल्लाह हाफिज़
0: अल्लाह हाफिज़ बहुत शुक्रिया आपका फरहंदा शेख समझ अच्छी बात है इन्होंने शिकायत नहीं की चुप करके अगला गाना सुना बिंदु गुस्से से तम तमा जाना या That is also correct. तम तमा जाना बिंदु क्योंकि मुझे वो एक्सप्रेशन अच्छी लगी आपे से बाहर हो जाना

0: बिल्लियां।
1: ये कभी मैंने नहीं लगाया, पहली बार बेमिसाल अंदाज में उमर के लिए, और अच्छा गाना था, वेरी वेल सॉन्ग। उमर भी बहुत खुश हो गए हैं, बहुत ज्यादा शुक्राना किया है। ओंगाटा रोंगा इसे आरफा कहती, आज मेरा जी चाहता है कि मैं एक एक लिसनर जो बेमिसाल अंदाज में कंट्रीब्यूट करता है उसका शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद कहूं। कहती इतनी यूनिक कंट्रीब्यूशन होती है लिसनर्स की, समझ। जैसे ही मैं बेमिसाल अंदाज को खोलती हूं, आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और स्टार्ट टैपिंग, एकदम जब जब इंफॉर्मेशन आती है फ्रॉम रसिल्ला, कृष्ण सरोय, अश्विन दोषी, तमाम तमाम, प्यार अली भाटिया, किस किस का नाम लूँ, समिन आप तो एमएल विश्वकर्मा, मंजुला विश्वकर्मा, सब भी इकट्ठे हो जाते हैं, मुतहरिक हो जाते हैं, एक्टिव। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ आरफा ओंगाटा रोंगा, इसका भी शुक्राना आप कबूल करें। वो भी कहती हैं कि बहुत अच्छे लिसनर्स, अमेजिंग, एन्जॉइंग योर प्ले लिस्ट, थैंक यू, सोनल ने कहा है। और एक बड़ा मीठा सा पुराने ज़माने का गाना है, वो भी सुन लें।

0: चलिए अश्विन दोषी से पूछते हैं। अच्छा अश्विन, इस गाने के बारे में हमने बहुत कम बात की है।
1: यस, ये थी फिल्म परवीन जी, तीन बत्ती चार रास्ता।
0: क्या
1: आपको मालूम है तीन बत्ती चार रास्ता?
0: अच्छा नहीं, ये मैंने कभी सुना ही नहीं है।
1: सुना नहीं? ये भी शांताराम की फिल्म थी परवीन जी।
0: ओके।
1: इसमें इंडिया की एकता की मैसेज था।
0: अच्छा,
1: इसमें क्या था, एक बड़ा बड़ा सेठ था, उसके पांच छह लड़के थे। तो ईच लड़का, एक लड़का सभी प्रांत की लड़की से शादी करता है। एक गुजराती बहू है, एक पंजाबी बहू है, एक साउथ इंडियन बहू है, एक बंगाली बहू है, एक सिंधी बहू है, ऐसा मसाला करके जस्ट टू गिव ए मैसेज that India is one. Okay, there are so many communities like Gujaratis or Bengalis, but after all, we are one nation.
0: What an idea!
1: It was a very good, it was a hit movie, Parvizi, in the early 50s. Sabhi, isme Nirupa Roy thi, Sheila Ramani thi, Shashikala thi, lekin main hero, heroine thi, करण दीवान और संध्या।
0: ओके।
1: यस। और ये गाना लिखा था पीएल संतोषी ने और म्यूजिक था शिवराम वाज परवीन जी, इतना पॉपुलर म्यूजिक
0: था नहीं हुआ जी,
1: नहीं हुआ। लेकिन शांताराम का आइडिया बहुत, इवन द आई थिंक दैट टाइम the Prime Minister was Jawaharlal Nehru. Usne bhi, I think he appreciated and commended to Shantaram ki aapne bada message bheja hai to cinema. You know, we shouldn't fight Gujarati, should do inter-community.
0: Bilkul.
1: Yeah, hum sab ek hai.
0: Ek hai. Hindustani. और हम राइट, हम एक मुल्क में, चाहे कितने रंग नस्ल धर्मों के हों, हम एक मुल्क में पॉसिबल है कि अमन के साथ रहे,
1: है ना? एंड दे शो दैट डिस्पाइट ऑल दिस सन्स हैविंग वाइव्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, दे ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली।
0: क्या बात है, बहुत ही खूब।
1: बहुत बड़ी, आपको कभी मौका मिले
0: जी जी,
1: तो देख तीन बत्ती चार रास्ते।
0: तीन बत्ती चार रास्ते, ओके, जरूर। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू अश्विन। देखा समझ, आपको पता भी नहीं था, दो तीन बत्ती चार, चार बत्ती के तीन बत्ती एक रास्ता, चार रास्ते, तीन बत्ती चार रास्ते। नमस्कार, दिनेश पोपट ने कहा, एंजॉइंग योर एवरी मिनट ऑफ द शो, थैंक यू। सिड कप लंदन से, दिनेश पोपट सो गुड। पर चले आगे सुनते हैं ये गाना।
2: केन्या प्रीमियर एशियन मिक्स, केन्या प्रीमियर एशियन मिक्स।

0: और कहते हैं उमर फ्रॉम जर्मनी द मेलोडी क्वीन इज हियर. आरफा ने कहा है वाकई आपने ठीक कहा कि कंप्लीट ना होती लिस्ट नूर जहां की आवाज के बगैर. और यहाँ पर है एक छोटा सा मैसेज.
1: हेलो प्रवीण जी, नूजा वाह वाह मजा आ गया, इतना सोना गाना चांदनी रात के. थैंक यू वेरी मच.
0: क्या बात है. चलिए समन, पुराने नए, खामोश और एक्टिव, जवान और उम्र सीधा, सभी लिसनर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ. अब इंशाल्लाह कल बुधवार है, मुलाकात होती है उसी वक्त उसी फ्रीक्वेंसी पर. तैयार रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा. और आगे आ रही हैं निमरत कौर आफ्टरनून अफेयर में.

0: news from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Parveen Adam.
1: East FM par aaj ka khabarnama. पहले खबरों की सुर्खियां हाई कोर्ट का हुक्म सरकार को ईबोला क्वारंटीन सेंटर पर ईरानी अमेरिकी हॉर्मुज स्ट्रेट में हमलों के दावे म्यांमार गांवों पे हमला दर्जनों की मौत खबरें तफसील से हाई कोर्ट नैरोबी ने सरकार को हुक्म दिया है कि अमेरिका के साथ हुए ईबोला फैसिलिटी समझौते की तफसील जनता को दी जाए 1.7 बिलियन शिलिंग के मुआयदे को खुफिया नहीं रखा जा सकता जस्टिस पैट्रिशिया न्यूकुंडी ने सदर रूटो की सरकार को रोक दिया है कि किसी ईबोला के अमेरिकी मरीज को केन्या दाखिल ना होने दिया जाए जब तक कटिबा इंस्टीट्यूट और लॉ स्कूल ऑफ केन्या की अर्जियां अदालत में सुनी नहीं जाती आलमी खबरें अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हमलों का दावा किया है यूएस फौजी ज़राए का कहना है कि ईरान की मिलिट्री साइट्स पे वार हुए हैं और तेहरान ने भी अमेरिकी बेस पे ड्रोन हमले किए बयान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान इनकलाब ने दिया म्यांमार में अलैदगी पसंदों के कब्जे में पांडलोन गांव में धमाका हुआ है 46 की मौत की खबर है करीब 300 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी फौजी हुकूमत से कब्जे की लड़ाई कर रही है इनका कहना है कि वेयरहाउस में रखा बारूद फट गया 74 म्यांमारीज को अस्पताल दाखिल किया गया है जो वारदात में जख्मी हुए फ्रांस में पुलिस और फुटबॉल के शायकीन के बीच झड़पों में 219 शहरी जख्मी हुए हैं पेरिस में रेल और गाड़ी का सफर मुतासर हुआ है बदमनी में हालात खराब होने की वजह पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल फुटबॉल टीम के खिलाफ जीत थी फ्रांस के गृह मंत्री लोरेन नुनेज ने बयान जारी किया है कि फैंस की लड़ाई में 780 शहरी हिरासत में लिए गए हैं आईफल टावर पे जीत का जश्न 6000 पुलिस अफसरान की निगरानी में हुआ इतवार के दिन डीआरसी कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इबोला के मरीज तंदुरुस्त होकर बुनिया अस्पताल से निकले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा का कहना है कि इन 5 नर्सों का वायरस से निजात पाना जाहिर करता है कि बीमारी को शिकस्त दी जा सकती है कांगो में अस्पतालों के बाहर इबोला से मरने वालों के परिवार और अस्पतालों के स्टाफ के दरमियान झगड़े आम हो रहे हैं जहां लाशों को दफनाने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही ये थी आज की खबरें मैं हूं परवीन आजम
0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला फेस बेबी, शरीफ हूँ।